0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक It's 6 AM
3: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: It's 5 PM
3: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 9 PM
2: अहिले रातको 9 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 AM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।